हमारे खलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tariqhalal.com।

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो।

0: साल
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू
2: गोल टू
3: ये है
4: लाइका रेडियो।

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल At all protected. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
6: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
7: Ganpati Bappa ke aagman se घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल।
8: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
7: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
9: You know how fans shout at football matches?
10: Wake up!
9: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
12: Se Ganpati Bappa Moria.
13: Leica Radio Network ki taraf se aap sabhi ko Ganesh Chaturthi ki shubhkamnaen.
14: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: 90s. Laika Radio Network की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
2: 90s throwback plays now. Laika Radio.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सारे फासले मिटाकर और दूरियां खत्म करके हफ्ते की पहली मुलाकात जिंदा रहने के लिए एक नहीं बल्कि कई मुलाकातें जरूरी हैं। मंडे मॉर्निंग हफ्ते के पहले शो में प्रोग्राम के पहले वार्म अप टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उठ जाइए, सुबह हो गई है। मैं चाय बना के लाऊं, तुम बिस्किट लेके आना। बैक टू बैक तीनों गानों में मुलाकात के लफ्ज की तकरार और ये मुलाकात जारी रहेगी दोपहर के पूरे 1 बजे तक।

0: जी हाँ जी, सुनाइए जरा दिल की दास्तान, सानू भी सुनाइए। सतेंद्र सरताज प्रोग्राम के पहले हिस्से का पहला पंजाबी सॉन्ग।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: US dollar rate ka sharia 35.35. Indian rupees mein 129 rupees 27 paise, Pakistani rupees mein 375 rupees 58 paise. Bangladeshi taka 167 taka 65 paise. Sri Lankan rupees 444 rupees 84 paise aur Afghani rupees 87 rupees 4 paise.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Formerly known as Asian Sound Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall wale ka paigham very competitively. हॉलीडे पैकेजेस दे रहे हैं आपको, ये दुबई के सिलसिले में। दुबई जाने के लिए तैयारियां कर लें और टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी, एटोल प्रोटेक्टेड है और नंबर इनका है 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: और अब उर्दू की खास खास हेडलाइंस। नेतन्याहू के मेकअप पर करोड़ों खर्च, सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ से तनाजा खड़ा हो गया। 47 साल अफगान खातून की अमरीका बदरी का फैसला कामयाबी करार। अमरीका में खसूसी गैर मुल्की दहशतगर्द अदालत का पहली बार इस्तेमाल, अफगान खातून मुल्क बदल। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सऊदी अरब में पाइपलाइन पर हमले में इस्तेमाल मुकाम का पता लगा लिया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद दो फलस्तीनी शहीद। मस्जिद अक्सा पर यहूदी इंतहा पसंदों का धावा, 480 अफराद सहन में दाखिल। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी, मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई बमबारी। इंडोनेशिया में मुसाफिरों से भरी कश्ती लापता, 139 अफराद की तलाश जारी। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान सऊदी अरब के साथ हालत जंग में नहीं। ईरान ने आबनए हरमुस खोलने के लिए अमेरिका को 7 शराइत पेश कर दी। तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
3: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।

0: आ गया दिल का लुटेरा।
1: एक निगाह में क्या ले गया,
0: बात एक निगाह की नहीं होती, बात समझने की होती है कि निगाहें क्या कह रही हैं और इन आंखों के पीछे क्या राज छुपा है।
1: एक निगाह,
0: बस एक निगाह। गुड मॉर्निंग अलीशा चिनाए और कुमार सानू और इब्ने ताबेश। जी हाँ, दिल को जरा मुट्ठी में बंद कर लें, कहीं कोई लूट के ना ले जाए।

0: है खुशी।
1: जी हाँ, बात बड़ी सच है और थोड़ी सी कड़वी है, मगर कड़वी बातें सच्ची होती हैं। जिंदगी की रीत यही है साहब, हार के बाद ही जीत मिलती है। और किसी को जीतने के लिए कभी कभी इंसान को खुद को हारना पड़ता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Right, Janab, State Bank of India, yani ke SBI wale. योनो SBI मोबाइल ऐप यूके के जरिए आज के रेट इंडियन रुपीज में ब्रिटिश पाउंड के बदले में दे रहे हैं 127.09 रुपए।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। लाइक अ रेडियो।
1: राइट जनाब, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से फज में ताबिश में आप सबका स्वागत। जिंदगी की एक और हसीन खूबसूरत सुबह। थोड़ा सा मौसम बदला है लेकिन मैं नहीं बदला। हाँ, जरा सा वीकेंड ने थका दिया है। सबसे पहले लोगों ने मुझसे यही पूछा कि ताबिश भाई आपका वीकेंड कैसा गुजरा। अभी बताते हैं। प्रोग्राम बज़्मे ताबिश जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो हुआ करता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के दरमियान। रब्बुल इज्जत का लाख लाख एहसान कि उसने जिंदगी की एक और सुबह देखना नसीब की, जिंदगी का एक और हसीन खूबसूरत दिन। वो परवरदिगार जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। सितंबर महीने की आज 14 तारीख हो गई, मंडे मॉर्निंग, हफ्ते का पहला शो। मेरी डायरी के पन्ने पे आज कुछ नहीं लिखा, हाँ लेकिन आपके यहाँ कोई इवेंट हो रहा हो, किसी की बर्थडे है, जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई भी ऐसी बात है खुशी की जो आप मुझे बताना चाहें तो दिल खोल के बता सकते हैं चुपचाप। आप जानते हैं मैं किसी को नहीं बताता, वैसे भी मैं बातें इधर की उधर नहीं करता, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं ये मुझे इधर उधर करने पे मजबूर कर देते हैं। एक दूसरे की सलाम दुआ, अय्यूबी भाई का सलाम, तमाम सुनने वालों के नाम, फरीद भाई के नाम, गुलाम अली भाई का पैगाम, तमाम सुनने वालों के नाम। लंदन में युकेश भाई, इम्तियाज भाई, वालेकुम सलाम, साइम भली करी आया, साजिदा सुमरो, प्रेस्टन में शकील ममदानी, जाहिद अब्बास और सिर्फ अब्बास, और खुशबू, वारिंगटन में फरजाना नसीब, मुदस्सर सज्जाद, रोशजेल में गजाला जबी, अदनान और यासिर,
2: इबन ताबिश ऑन लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: और अब प्रोग्राम के पहले हिस्से का पहला पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग। 80s के जमाने की बात है जब डायरेक्टर शमीम आरा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, उस फिल्म का नाम था प्लेबॉय। लंदन में ये फिल्म जो है शूट हुई थी। किस किस को याद है भला, जिंदगी की रीत की बात हो रही है और यहाँ बात हो रही है जिंदगी में कोई ना कोई एक नाता ऐसा जरूर होता है जो

0: प्यारा आता है।
1: वरना कौन किसी के पीछे आता है साहब। ये थी मेहनाज।
2: This is Laika Radio.
0: क्योंकि सांस भी कभी।
2: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
3: इनके सामने तो प्रोसन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाने हैं।
4: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: A whole universe of entertainment.
6: Another function रखा हुआ है।
4: Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
8: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
9: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963 5757 and book your meeting.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, auto protected.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल sales@likeamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822 दैट इज 0161250822 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन
5: Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are Get

0: शहजाद कहते हैं वाह ताबिश भाई, दिल खुश कर दिया। लगता है राहों में मुलाकात हुई है इस वीकेंड पे किसी से आपकी। इंसान राहों में ढूंढता फिरता है, लेकिन अगर कभी भटक जाए तो वही बात हो जाती है जिसका डर होता है। फिल्म का नाम था विजयापत।
1: Like a radio.
0: मेरा नाम इब्ने ताबिश, आप चाहें तो मुझे प्यार से ताबी कह सकते हैं। कहते हैं सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, सुना है कि बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज्यादा भीगना मत, गलत फहमियां धुल गईं तो हम बहुत याद आएंगे। सुबह बखैर, वन सेकेंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो का पहले हिस्से का 55 मिनट का दौरानिया खत्म हुआ। प्रोग्राम के पहले हिस्से की एक और फरमाइश खालिद महमूद भाई और गजाला जबी और फरजाना पूछती हैं, आज का रिडल कहाँ गया ताबिश भाई? हाँ जी हाँ, रिडल तो हम पहले ही तैयार करके लाए थे आज। बिल्कुल जी, जबरदस्त रिडल है और जबरदस्त जहन की आजमाइश है। अब देखते हैं कि आपका जो जनरल नॉलेज है वो कहाँ तक, किस लेवल का है। रेडियो तो आप सुनते हैं, रेडियो के चाहने वाले, आज रेडियो का सवाल करते हैं आपसे। ये बताइए कि रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? यस, इसे आप सवाल कहें, रिडल कहें, पहेली कहें, कुछ भी कहें, आपकी मर्जी। अब आप मुझे खत लिखेंगे और इस खत पे जवाब देंगे 07703 40 30 के नंबर पर। खालिद महमूद भाई का एक गीत नाम करेंगे हम जमशेद चौधरी भाई के, जिन्हें महनाज का गाना बहुत अच्छा लगा था। 3 दिन से सोच रहे थे वो इस सॉन्ग के लिए और बिलाखिर मैंने प्ले कर दिया। जल्दी से मुझे खत लिखें और बताएं कि रेडियो और अखबार में क्या

सुनीति चौहान और सोनू निगम की आवाज, दोनों की दोस्ती पक्की हो गई, लेकिन मुझे कोई दोस्त नहीं बनाता, क्या वजह हो सकती है। मैं भी कभी खुश होता, मैं भी कभी गाता, कभी नाचता, दोस्ती हो गई है।

0: दो तनहा मिले तनहाई मिटी, वादा करो कि दोपहर एक बजे तक साथ दोगे। वारिंगटन में एंथोनी भाई आज हमें सुन रहे हैं। एंथोनी भाई वेलकम। एंथोनी बाबर भाई कहाँ है आप? लाहौर में ताबीर आपने ज्वाइन किया है हमें और
1: Like a radio. Tum dena saath mera. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साफ ट्रेवल at all protected.
3: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner Leica Radio.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
5: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है। पास हो गया, लड्डू खिलाओ। नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ। अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए। और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए। कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
6: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: जनाब वेलकम बैक है अनुराधा पौडवाल, एमजे शिखर कुमार की आवाज। दिले बेकरार का किस्सा है साहब, पूछा बस इतना है कि रेडियो और अखबार में क्या फर्क है।

0: Today's Tea Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Like a radio. जी जी, किस्सा कुछ यूँ है कि आज हमने रिडल में आपसे पूछा है कि रेडियो और अखबार में क्या फर्क है। बड़ी सिंपल सी बात है, रेडियो आप सुनते हैं, अखबार आप पढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका सही सही जवाब। बरी से लेला लिखती हैं कि अखबार कलम आगे आप लिखती हैं कि अखबार जो है वो कलम की दुनिया है ताबिश, और रेडियो आवाज की दुनिया। वही वाह, बात में दम है। शमीम बानो बेगानी ने गुड मॉर्निंग कहा है, शुक्रिया आपका। बाबर भाई कहते हैं काम काम और काम और क्या करें ताबिश भाई। हाँ बाबर भाई, सही करते हैं आप, शुक्र है आप काम तो करते हैं, मेरी तरह बेकार तो नहीं है। आसिम कहते हैं एक फरमाइश करूं, नहीं। राजा अतीक भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमजा कहते हैं जी ताबिश भाई, जी भाई मैंने तो कुछ नहीं पूछा। और अतीका जी का फूलों का गुलदस्ता। और कजूरी जी कहती हैं जरा सोचते दीजिए, सोच के बताते हैं, न जाने आपने ये जो पूछा है इसका हम जवाब सही दें या इधर उधर से घूम फिर के दें। मेरा ख्याल इधर उधर से दें तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा फनी होना चाहिए। फरजाना नसीब कहती हैं कि हम सब जो आपको सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सुनते हैं तो हम आपके कौन होते हैं भाईजान। ये तो आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रही हैं फरजाना जी। अंजुम हमारे साथ हैं, अंजुम बहुत शुक्रिया। और बिल्कीस बहन, शिराज और आसिम हमारे साथ हैं ओल्डम में। खुर्रम रेहान रहमान सागर भाई हैं हमारे साथ। और साबरा बहन है जी हमारी बोल्टन में।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Currency rate US डॉलर 1.35, 1.35 इंडियन रुपीज में 129.27, पाकिस्तानी रुपीज में 375.98, बांग्लादेशी टका 167.65, श्रीलंकन रुपीज 444.84 और अफगानी रुपीज 87.04 का।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Ye hai LIKA Radio. LIKA
1: Radio. Aur ab Mehdi Azam Khan sahab ka बड़ा दिलकश और बड़ा दिलरुबा टाइप का गीत है ये। बात किस्से कहानियों की हो रही है, किस्सा तो लोग लिखते हैं, कुछ लोग कहानियां लिखते हैं, कुछ लोग डायरी लिखते हैं और कुछ लोग दिल में मोहब्बत करते हैं लेकिन कहते हुए घबराते हैं। ये गीत जा रहा है कराची फरीद भाई के पास और इसी गीत को हम नाम करेंगे शमीम बानो बेगानी आपके और गजाना जी भी आपके।

दिल में तो मोहब्बत है लेकिन कहते हुए क्यों शर्माते हो। देखिए जो शर्म और हया है ना, ये हमारी मशरिकी खवातीन का गहवारा है। सैयद जहीर कहते हैं, ताबिश भाई दोस्ती करते हुए क्यों कतराते हो। अरे वाह वाह भाई, बात यह है कि ताबिश ने जिंदगी में बहुत कम लोगों से हाथ मिलाया है, बस कुछ ऐसे ही है। साजिदा सुमरू ने हमें माशाल्लाह सऊदी अरब से पिक्चर भेजी है, मक्के की मदीने की, और कहती हैं मैं उम्रे पे आई भी हूँ ताबिश भाई और आपको सुन रही हूँ। क्या बात है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बरी में अमन हमारे साथ हैं, लिखते हैं कि रेडियो ओनली ब्रॉडकास्ट वेयर यू कैन लिसन न्यूज म्यूजिक ईटीसी और न्यूज पेपर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस। हाँ ऐसा तो है। जहीर कहते हैं उफ ताबिश भाई, और अय्यूबी भाई कहते हैं मेरा गाना यकीनन। राजा अतीत भाई कहते हैं कभी कभार उसे देख लें, कहीं मिल लें, कभी कभार उसे देख लें मिल लें, ये कब कहा है कि वो खुश बदन हमारा हो। जबरदस्त राजा अतीक भाई। अच्छा जी, रेडियो और अखबार में क्या फर्क है, अभी तक बात में मजा नहीं आया। वैसे शहजाद आपने कुछ कुछ जरा मेरे दिल को छूने की बात की है आज। अब बताओ कोई कैसे मोहब्बत छुपाए। बात तो छुपने और छुपाने की हो रही है, बात इजहार ख्याल की हो रही है, बात कतराने की हो रही है। कुमार सानू और साधना सरगम, ये गीत हमें लेके जाएगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की लास्ट ब्रेक पे।

0: बताओ कोई कैसे मोहब्बत छुपाए, आंखें मिली और कदम डगमगाए, छुपाओ छुपाओ
1: आंखें मिली और कदम डगमगाए, आंखें मिली और कदम डगमगाए।
0: तो सैयद जहीर कहते हैं ताबिश भाई मेरे नाम, प्लीज ये सॉन्ग मेरे नाम, मुझे लगता है तुम गाड़ी चलाते चलाते झूम रहे हो, नाच रहे हो, गाड़ी हिचकोले खा रही है, जरा संभल के भाई। और सबीर मिर्ची वाला कहते हैं ब्रो, समीर मिर्ची वाला कहते हैं हाउ आर यू ब्रो, आई एम ओके ब्रो। रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: हाँ जी, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 104.75 पाउंड पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 38,500 रुपीस।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट, विजिट heartyhanks.com।
3: ये है
4: Leica Radio,
5: a season of fun and family times you don't want to miss. But it also brings flu, RSV and other viruses that can lead to serious illness and even time in hospital. Thankfully, vaccines are the safest way to keep everyone protected, from little ones and teens to older people and those who need extra care, like if you're pregnant. Find out more about who can get the winter vaccines and how. Search NHS GM Winter Vaccinations. That's NHS GM Winter Vaccinations.
2: Leica Radio.
0: Right, Janab. Catch live and exclusive cricket action between India and Afghanistan on Joy Hotstar Pay. ये कहते हैं कि 3-1 डे इंटरनेशनल फ्रॉम संडे 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक रोजाना दोपहर के 2:50 पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लें, सब्सक्राइब करें जियो हॉटस्टार पर, इनकी ऐप को आप देख सकते हैं स्काई टीवी पे, ऐप पे जाके।

0: आने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन। कौन और कैसे इन वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
1: The Buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
6: Laika Radio launches in Leeds and Bradford soon.
7: लीजिए जनाब, ये भी भाई की पसंद। कहते हैं साविश भाई, please, no more sad song, please. हाँ, वैसे बात सही है। लेकिन अदान तो कह रहे थे साविश भाई, चेस आ गई। चलें, कोई गल नहीं।

0: हर बात में हमेशा सोचता हूँ, शायद आप भी सोचते होंगे, लोग कसमें क्यों देते हैं? मेरी कसम, तुम्हारी कसम, ऊपर वाले की कसम, क्या बिना कसमें दिए इंसान का गुजारा नहीं होता? एक अच्छा गीत था, बहरहाल पसंद आपकी, आई बी भाई थैंक यू, और मैं वापस आता हूँ 12 बजे के बाद।
1: Your mid morning sounding good with Ibanez Habish. Like a radio. This is Like a Radio.
2: Like a Radio.
1: Greater Manchester.

0: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ, कुछ लोग मोहब्बत का मतलब बहुत देर में समझते हैं। बाबा सुप्रियो और अलका याग्निक। गीत नाम करेंगे हम मासिम तुम्हारे। ओल्डम में हमें ज्वाइन किया है हमारी दमयंती दीदी ने। दीदी नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: ये है Laika Radio. Laika Radio.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साफो ट्रेवल Atto protected. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: एक दो तीन चार
9: गणपति की जय जयकार
10: से गणपति बाप्पा मोरिया।
8: गणपति बाप्पा मोरिया।
11: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
12: Your guzzle hit plays now on Laika Radio Greater Manchester.
0: जनाब गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, कुछ भी कह लो, बात जिंदगी की है सर। जिंदगी में कुछ छुपाना, कुछ बताना और कुछ जतलाना, ऐसे ही चलता है ना। नासिर काजमी की इस हफ्ते के प्रोग्राम की

0: गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नासिर काजमी की बड़ी छोटी सी बहर की गजल जो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि गजल मेरे नाम, जी हाँ आपके नाम। अब किसी एक का नाम लूंगा तो फिर ज्यादती होगी, लिहाजा जिस जिस ने भी मुझे वक्त नहीं मिला और मैसेज नहीं कर पाए और जिनकी पसंद की गजल थी मेरी जानिब से उनके नाम हो गई। कहते हैं कि जिनको नजर आती हैं हजार खामियां मुझमें, जिनको नजर आती हैं हजार खामियां मुझमें, वो कभी कहा करते थे, वो कभी कहा करते थे कि तुम जैसा कोई नहीं। नासिर इस दियार में चैन की घड़ी है तू। और कहते हैं कि मेरी आंखों पे कोई तो दम कर दो, मेरी आंखों पे तो कोई दम कर दो, ये मुसलसल तुम्हें देखने की जिद करती हैं। मंडे आफ्टरनून और दोपहर का खाने का वक्त, कहते हैं तुम जंग नहीं थे के जीत लेते तुम्हें। अरे वाह वाह वाह, तुम जंग नहीं थे कि जीत लेते तुम्हें। हम तुम्हें हारे हैं, हम तुम्हें हारे हैं बेइंतहा मोहब्बत करके।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, जनाब, करेंसी के रेट एक बार फिर से प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में। यूएस डॉलर 1.35, 1.35 भारतीय रुपया 129.27, पाकिस्तानी रुपीज में 375.98, बांग्लादेशी टका 167.65, श्रीलंकन रुपीज 444.84 और अफगानी रुपीज 87.04।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, jenab. Southall walon ka paigham, वेरी कम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स दे रहे हैं आपको दुबई के मामले में। दुबई जाने की तैयारी करें और हालात साजगार हैं और टर्म्स कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, याद रखिएगा। एटोल प्रोटेक्टेड है, नंबर इनका है 0208574 8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: सोने का भाव हमारे यूके में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 104.75 pounds पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज 38,500 rupees पर ग्राम।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio.
0: Program ke teesre hisse ke aadhe hisse ke baad live read. भारतीय प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति किस किस को पसंद है, द लेजेंड कविता जी परफॉर्म करने आ रही है जी रॉयल अल्बर्ट हॉल में संडे के दिन 1 नवंबर को। ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट और दिवाली स्पेशल पे टिकट के लिए बॉक्स ऑफिस वेन्यू कर सकते हैं आप, या फिर आपको बता दें कि लायक रेडियो की एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है और सुनील ग्रोवर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। कौन कौन जा रहा है इन्हें देखने के लिए? वैम्बली में, ओवीओ अरीना वैम्बली में ये होंगे 29 अक्टूबर को 29 को, जबकि बाद में ये आएंगे लेस्टर मिटोली अरीना में सैटरडे के दिन 31 अक्टूबर को। ये भी हमारे रेडियो पार्टनर है और टिकट के लिए AXS पे जाइए, इवन ब्राइट पे।
1: Leica Radio.
3: From Southall Broadway to the London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.

0: ऊंची है बिल्डिंग और लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, घुटनों में दर्द है। ये बात हमें लिख के भेजी रॉबिन भाई ने, आए घुटनों में दर्द। तेरा
1: Like a radio launches in Leeds and Cork. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज एक बार फिर से SBI वालों का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाएं। Yes, State Bank of India. इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। आज का रेट है, कहां गया रेट? हाँ, 127 रुपए 9 पैसे, 127 रुपीज 9 पैसा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester.
0: जनाब पता ही नहीं चला, सुबह से भागते दौड़ते बिलाखिर दोपहर के हमारे यहाँ 12:40 हो गए। पाकिस्तान में शाम के 4:40, भारत में 5:10 और न्यूयॉर्क में रॉबिन भाई के शहर में सुबह के 7:40 हो रहे हैं। हमने आज का रिडल आपसे ये पूछा था कि बताइए रेडियो के चाहने वालों, रेडियो में और अखबार में, न्यूज़पेपर में क्या फर्क है। सबने बस एक ही बात कही कि रेडियो आप सुनते हैं, अखबार आप पढ़ते हैं, लेकिन बात कुछ और होना चाहिए थी। अतीका जी ने कहा, बात यह है ताबिश के अखबार जब हम रोज पढ़ते हैं ये खुशफहमी होती है कि हम आज का ताजा अखबार, ताजा खबर पढ़ रहे हैं, जबकि वो एक दिन बासी होती हैं खबरें। हाँ, लेकिन रेडियो, रेडियो ताजा तरीन होता है हमेशा। जब भी रेडियो ट्यून इन करें आपको ताजा तरीन बात ही मिलेगी कोई ना कोई। और आसिम कहते हैं कि ताबिश भाई अखबार पढ़कर टेंशन होती है मगर रेडियो सुनकर टेंशन दूर होती है। चौधरी अयाज भाई, आपने कहा था ये गजल मेरे नाम। हाँ जी मेरे भाईजान, आप हमेशा मुझे प्यार से भाईजान कहते हैं। कजोरी जी ने बहुत एंजॉय किया, मसरूफियत के बावजूद, तबीयत की नासाजी के बावजूद बड़ा तवील जवाब लिखा है। मैं इतनी फरावानी से इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता कजोरी जी, लेकिन आपने जो भी लिखा है हमारे रिडल का जवाब सही लिखा होगा। और अदनान मुस्तकिल हमारे साथ हैं रॉजडेल से, जहीर हमारे साथ हैं, ताबीर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अल्ताफ अलवी, वालेकुम सलाम। और अब ये की जा रहा है फरीद भाई की तरफ से गुलाम अली भाई और अय्यूबी भाई और रॉबिन भाई के नाम। लो जी, बड़े दिल से पुकार रहे हैं फरीद भाई आप। नील कमल, रफी साहब की मधुर आवाज़।

0: तेरी चाह,
1: आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में,
0: पुकारे
1: तुझको पुकारे मेरा प्यार। मेरे प्रोग्राम के आज के 3 घंटे के दौरानिये का मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत गाना है। ओए वाह फरीद भाई, वकार अंकल कहते हैं मेरे नाम कर दो। ओके वकार अंकल,
0: पुकारे मेरा प्यार।
2: ये है Like a Radio. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Southall Travel.
6: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
5: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.
8: London, get ready for an unforgettable night.
9: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
8: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
9: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
8: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
9: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
8: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
10: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
7: Up next, Ravina Khan with the magazine show. Leica Radio, Greater Manchester. The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: और आज के हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी तड़का, माला बेगम। कहते हैं कभी कभी इंसान किसी के प्यार में जलता है। क्यों जलते हैं लोग यार, कोई बताएगा मुझे।

0: सबका शुक्रिया अदा किया है। फरीद भाई आपका भी, आपने बहुत खूबसूरत गीत गुलाम अली भाई और अयूबी भाई के नाम किया और यही गीत बहुत अच्छा लगा योगेश भाई को। एंथनी भाई आपका बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों का, वकार अंकल, अरशद मुगल भाई, मुंशी जाबिर हैं कोई बोल्टन में, बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन किया मुंशी जी, कैसे हैं आप। नवाज भाई ब्लैकपूल में, चौधरी अयाज भाई, सैयद जहीर, गजाला जबी, फरजाना नसीब, राशिद भाई रेडक्लिफ में, नईम मलिक, नौशाद अली भाई थोड़े से नाराज से हैं मेरे से। नौशाद भाई क्यों होते हैं छोटे भाई से नाराज। मेरी कुल कायनात, मेरी दुनिया आप ही लोग हैं, आप लोगों का साथ होता है तो मैं रोजाना यहाँ आता हूँ। गोल गप्पे की पिक्चर भेजी है भाई, गोल गप्पे, मुंह में पानी आ गया। अबरार भाई बहुत शुक्रिया, अतीक जी आपका बहुत शुक्रिया, दमयंती दीदी, ताबीर बहुत शुक्रिया आपका, उमर, अमन, साजिदा, सुमरो, सीमा, बली, शहजाद, रहेला जी बहुत बिजी रही हैं आज, नहीं सुन पाई प्रोग्राम, अहमद गेटली में, मुदस्सिर, अंजुम जमान, एजाज भाई आपकी फरमाइश आज पूरी नहीं हो सकी, मैं माफी चाहता हूँ। मलिक आपको बहुत शुक्रिया। रिडल का जवाब पता है क्या था? देखिए रेडियो और अखबार में बस इतना सा फर्क है कि अखबार में आप कम से कम दो रोटियां लपेट के घर ले जा सकते हैं। हम तुमसे ना कुछ कह पाए,
1: तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए,
0: फिर अमान अल्लाह, खुदा पाम।

0: Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: जी तो मैगजीन शो आप सुन रहे हैं. पहला गीत आपने सुना अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में. हाँ, ये मेरा दिल जोश फिल्म से लिया इस गीत को हमने, और 2000 की फिल्म थी ये. जबकि अभी जो गीत आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और नीति मोहन, रोशिक कोहली, बहुत से लोग गा रहे थे. सो मेरी जिंदगी है तू. सो जी, ये है आपका अपना नंबर वन लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, और आपके लिए प्रोग्राम लेकर द मैगजीन शो. ऑफिशियली तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैव अ वेरी गुड आफ्टरनून. उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड जबरदस्त गुजरा होगा, ब्यूटिफुल, और आपने बहुत कुछ इंजॉय किया होगा. सो मंडे आफ्टरनून एक बार फिर से हम आपके साथ. उम्मीद करते हैं ये वीक भी हम सबका बड़ा जबरदस्त गुजरे. फुली जैम पैक प्रोग्राम द मैगजीन शो आपके लिए, जिसमें आज स्टोरी भी होगी, खबर पर नजर भी होगी, एक सवाल भी होगा, आपके जवाब भी होंगे ऑन 07703 40 30 20 पर. जी हाँ, मैसेज करने के लिए ये नंबर है. सो Yes, all together.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio Network की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
3: क्योंकि सांस भी कभी.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Winter, a season of fun and family times you don't want to miss. But it also brings flu, RSV and other viruses that can lead to serious illness and even time in hospital. Thankfully, vaccines are the safest way to keep everyone protected, from little ones and teens to older people and those who need extra care, like if you're pregnant. Find out more about who can get the winter vaccines and how. Search NHS GM Winter Vaccinations. That's NHS GM Winter Vaccinations.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल. At all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you, so why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: Punjab, the biggest tunes.

का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है. लाइका रेडियो.

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और अब तैयार हो जाइए करेंसी एक्सचेंज के अपडेट के लिए. यूएस डॉलर आपको मिलेंगे आज 1 पाउंड के एक्सचेंज में 1.35 डॉलर्स, इंडियन रुपीस 129.27, पाकिस्तानी रुपीस 375.98, बांग्लादेशी टेकर्स 167.65, श्रीलंकन रुपीस 444.84, अफगानी 87.04.
1: रेडियो. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. A LIKA Radio Classic plays now.

0: सजी मजे मजे का गाना हल्का याद भी तो देता ना इनकी आवाज है आपकी सुनी फिल्म जानवर 1999 की फिल्म थी जी लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. और आप से एक सवाल, सवालों को भी आप कैटेगरी में डाल देती हैं, ये आसान है ये मुश्किल है. सवाल तो सवाल ही होता है, कोई सवाल ऐसा भी होता है जिसका जवाब देना बहुत आसान हो, लगता नहीं है. सवाल की दहशत ही बहुत है. बंदे से अगर आप कोई पूछे ना कि आपसे एक सवाल है, एक बात पूछूं, तो अगले का वैसे ही दिल बैठ जाता है कि पता नहीं क्या बात होगी, क्या पूछा जाएगा. लेकिन आज जो सवाल है वो वाकई कुछ ऐसा ही है. अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्क्राइब करें इन थ्री वर्ड्स, तो वो थ्री वर्ड्स क्या होंगे, आपके ख्याल में क्या होंगे? आपके फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको किन तीन लफ्जों से याद या डिस्क्राइब कर सकता है? अब देखें, ये बड़ी खुशफहमी का सवाल है. हर कोई समझेगा कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं. नेगेटिविटी, बहरहाल हर बंदे में कुछ अच्छाइयां बुराइयां तो होती है ना, तो अगर उन बुराइयों का कोई नाम रख दिया जाए और उसका उस नाम से याद किया जाए तो अच्छी बात तो खैर नहीं है फिर भी. लेकिन सवाल यह है कि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है आपको किन तीन वर्ड्स के साथ याद कर सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है. डिस्क्राइब इज द बेटर वर्ड, ठीक है. सो आप बताइए और मैं आपको एक गाना सुनवा देती हूँ. इस हिस्से में मसूद राणा की आवाज है, पंजाबी का सॉन्ग है. पहले ही बता दूं, बहुत खुश हो जाते हैं आप. कल मैंने कहीं एक बहुत अच्छे से कुछ गीत सुने और फरमाइश से सुने, तो मैंने कहा कि पंजाबी का भी कोई गीत सुनाए, क्योंकि मुझे आदत हो गई है कि आप लोग पंजाबी से बहुत खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश होती हूँ, ये नहीं बात है. सन्नू भी बड़ी पसंद है पंजाबी बोलनी, कोई इसमें शक नहीं है. दिल दिया लग गया नो.
1: पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.

0: रेडियो।
1: ये तो मानना पड़ेगा कि जहाँ पंजाबी शायरी एक बहुत डिफरेंट म्यूजिक के साथ जो है वो बनाई जाती है, लेकिन उसके साथ उसके लिरिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मासूम, बड़े इनोसेंट। जैसे अभी इस गाने में था ना, कई दफा आप नोटिस करते हैं कोई कुछ लिरिक्स को, कई दफा बस ट्यून में आप मगन होते हैं। अभी जो आपने ट्यून सुनी है, असी सियाने लोग इन्ने नहीं, कुछ इस तरह की बात थी। हाउ स्वीट, कुछ लोग अपने आप को ज्यादा सियाने नहीं कहते, सबसे अकल की बात यही है। रियली आप सोच के देखिएगा कि सबसे अकल की बात यही है कि अपने आप को सियाना ना कहा जाए।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So, gee. आज अगर आप इंडिया मनी सेंड करते हैं तो आज आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा 129.27 इंडियन रुपीस। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई यूनो मोबाइल ऐप। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 822 or sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio launches in Leeds and Bradford soon.

0: ज्यादा नाम होता है जो मौसीकार होते हैं उनका इतना नहीं पता चलता, लेकिन क्लियरली आपको पता चलता है कि कोई गाने में कोई म्यूजिक जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है. ऑब्वियसली लिरिक्स भी, आवाजें भी, ऑल टुगेदर, ये तो इसमें कोई शक नहीं है. बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और हमेशा वेरी काइंड ऑफ यू कि आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और बताते हैं. जो हमारा सवाल था कि आपका अपना बेस्ट फ्रेंड आपको किन तीन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करता है, करेगी, करेगा, या जो भी आप समझ लें. तो हमें पहला मैसेज जो आया है, उसके बाद भी बहुत से अभी मैसेजेस हैं जो कि वॉइस नोट पर भी हैं और दूसरे, लेकिन मैंने पढ़ा अभी एक ही है. आपने लिखा है जय चौधरी, आपने लिखा है जमशेद चौधरी, मुश्किल सवाल है. हाँ जी, वो तो आज मैं भी मानती हूँ कि मुश्किल सवाल है. आप फ्रेंड के बारे में तो पूछ सकते हैं, लेकिन अपने बारे में अब मैं क्या ही कहूँ, ये भी बात सही है. वैसे अच्छे दोस्तों के लिए अच्छा दोस्त, नेकी याद रखने वाला, और थर्ड नार्सिस के लिए बहुत बुरा मुकम्मल बायकॉट. ओके जी, सो ये आपका आपके ख्याल में कि आपके लिए तीन वर्ड्स या तीन डिस्क्रिप्शन हैं जो आपके दोस्त आपको दे सकते हैं. अभी बहुत से मैसेजेस हैं, उनको मैं सुनती हूँ, लेकिन इतने ऐसे में कि एक मैं आपको गाना सुनवा देती हूँ. नेक्स्ट आवर में मिलेंगे तो बात करेंगे. लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज है, बेखुदी में सनम.
1: This is Laika Radio.
0: फिल्म का नाम बड़ा जबरदस्त है, हसीना मान जाएगी, 1968 की फिल्म, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर.

0: Magazine Show with Robina Khan. Laika Radio.
1: जी, मैगजीन शो आप सुन रहे हैं. आपने पहले एक वारी गाना सुना. एक वारी नहीं बल्कि गाने का नाम है एक वारी. रोमी की आवाज थी, मेरे हस्बैंड की बीवी 2025. देख लीजिए क्या नाम है, क्या अंदाज है. सो बहरहाल ब्यूटीफुल ट्रैक था. और सेकंड सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, श्रेया घोषाल की ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत आवाज आप सुन रहे थे. लेकिन आपके मैसेजेस जो हैं वो भी जबरदस्त हैं और मेरे पास हैं, मैं जरूर शामिल करना चाहती हूँ. आपके दोस्त, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको कैसे डिस्क्राइब करते होंगे आपके ख्याल के मुताबिक. सो ये मेरा आज का सवाल है. बहुत जबरदस्त जवाब मुझे मिले हैं. सुफियाना आपने लिखा है कि माई बेस्ट फ्रेंड डिस्क्राइब मी एज के कंजूस नहीं है, बिग हार्टेड है और गुड फ्रेंड, नॉट यार मार. यानी कोई ऐसे सिर्फ वाकफियत वाले एक्वेंटेंस की बात नहीं है, बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है. और आपके बारे में आपके दोस्त शायद ये भी कहते हैं आपके मुताबिक कि आप मुश्किल फ्रेंड हैं, यानी कि आप शायद सबके साथ दोस्ती नहीं कर लेते. तो इंटरेस्टिंग जवाब है जी, आप जरा मुश्किल फर्द हैं कि आपके दोस्त भी कहेंगे. फरजाना आपने कहा है कि मैं जब भी अपनी दोस्त को फ़ोन करती हूँ तो वो हमेशा ये कह देती है कि मैं परेशान हूँ, बहुत टेंशन देती रहती है, इन बातों से वो मुझे उलझा देती है. चलिए, आपका जवाब बहुत वैलिड है एक लिहाज से कि ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेट हेलो के साथ ही जो है ना अपनी कहानी सुनाते हैं और हर वक्त मतलब कभी चेंज नहीं करते कि दूसरा भी बात करे. तो एक लिहाज से ये कॉन्वर्सेशन जो होती है या आपने जो मैसेज लिखा ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा. हमारे सुनने वाले जरूर इसको सोचेंगे. और फिर हमारे पास एक मैसेज है, मैं ट्राई करती हूँ कि अगर आप तक इसकी आवाज ही पहुंच जाए. ये हमें शिराज ने भेजा है.
2: अस्सलाम वालेकुम, शिराज बात कर रहा हूँ ओल्डम से. अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो कराची में थे या हैं अभी भी, अगर आप उनसे पूछें ये सवाल तो वो मेरे बारे में आपको सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाई मतलब दिमाग की दही करने वाला मीन्स ये बहुत बोलने वाला. तो मैं बहुत बोलता हूँ तो बस वो आपको एक ही यही अल्फाज बताएंगे कि दिमाग की दही करने वाला.
1: चलिए, आपने अपने जो इसमें जो जवाब है उसको तो दही नहीं बनाया और जल्दी खत्म कर दिया. मैं कल 30 सेकंड का था. थैंक यू सो मच. और अभी जितने भी सवाल हमारे सवाल के आपके जवाब आएंगे उनको शामिल करेंगे. लेकिन फिलहाल लेके चलती हूँ एक टेस्टी ट्रैक की तरफ.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल. Atal protected.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
11: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
10: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
12: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है. पास हो गया, लड्डू खिलाओ. नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ. अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए. और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए.
13: कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का.
12: जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है.
13: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
1: Greater Manchester, Bradford, Leeds. We are getting bigger. Leica Radio.

0: सुप्रिया सिंह की आवाज अभी आप सुन रहे हैं जब वी मेट फिल्म का नाम और बड़ी गुड़िया मौजा का जिक्र है इसमें, कोई सुखिया मौजा नहीं है और क्या चाहिए।
1: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So, बहुत मजे की अब आप करेंसी एक्सचेंज अपडेट सुन लीजिए। £1 के एक्सचेंज में आपको US डॉलर मिलेंगे $1.35, इंडियन रुपीज $129.27, पाकिस्तानी रुपीज $375.98 रुपीज, जबकि बांग्लादेशी टकर्स $167.65, श्रीलंकन रुपीज $444.84 और अफगानी $87.04 अफगानीज।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. A Leica Radio classic. Plays now.
2: धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

0: फिल्म का नाम गोरा और काला 1972 की फिल्म लता मंगेशकर के साथ किशोर मुकेश की आवाज है एक्चुअली इसमें।
1: धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले।
2: The Magazine Show with Rubina Khan।
3: खबर पर नजर विथ रुबीना खान।
0: आज की जो खबर है वो यकीनन आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी और इसमें ये गाड़ी से मुतालिक है। कार्स की तो आपने बहुत देखी होंगी, तो कार या गाड़ी से मुतालिक है और इसमें मैकेनिक ने एक बड़ा ही अनोखा कारनामा किया है और वो ये है कि दुनिया की सबसे पतली गाड़ी यानी बहुत ही स्लिम गाड़ी उसने बनाई है। और ये बनाने की क्या वजह है, इसलिए ये वजह, और गाड़ी देखने में ऐसे लगती है जैसे कोई मजाक है, ये क्या चीज़ है, कीड़ा सा जैसे पड़ा हो यानी सड़क पर। लेकिन ये बनाने का मकसद पीछे जो है ना वो कीड़े जैसा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मकसद है, और वो ये है कि मैकेनिक ने दुनिया की सबसे पतली सबसे स्लिम गाड़ी तैयार की है जिसे 2027 के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस किताब का हिस्सा बनाने के लिए उसने ये इस गाड़ी को बनाया है। और ये नीले रंग की गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर और एक मुसाफिर पीछे भी बैठ सकता है अगर इसके अंदर हिम्मत हो यानी बड़ा ही दब के बड़ा ही बच बचा के बैठने की जगह है, बहुत ही कम जगह है। और अगर आप सोचना चाहें कि ये कितनी मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है या कितनी बतलाई है तो 50 सेंटीमीटर सिर्फ चौड़ी ये गाड़ी है। और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जैसे कि एक तकिया होता है, एक तकिया का जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें पूरी गाड़ी बना दी बंदे ने। और उसके मतलब ये एक अजीब गरीब बात है, इटली से ताल्लुक रखने वाले इस बंदे ने इस गाड़ी को बनाया है, एंड्रिया मराजी इसका नाम है। 2025 में एक फेस्टिवल में इसने तैयार किया और इसने 1993 की एक गाड़ी के मटेरियल को इस्तेमाल करके इस पतली तरीन गाड़ी को बनाया है। देखने में यह वाकई बिल्कुल सही बात है कि एक मजाक सा लगता है, खासतौर पर पार्किंग में जब खड़ी है तो मोटरसाइकिल से बस थोड़ा सा ही फर्क है, कहते हैं ना हुबा शुबा टाइप फर्क है, वरना ये गाड़ी इंतहाई स्लिम है। सो अब बस यही थी आज की खबर, लेकिन ये इंटरेस्टिंग खबर थी, मैंने सोचा आपके लिए इसको शामिल कर दूं। और अब हमारा अरशद की आवाज सुनेंगे हम पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर में।
2: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।
0: देखिए जी, आपको कहा ना कि पंजाबी स्टाइल और है, म्यूजिक भी बजता हुआ आता है, पता चलता है कि आने वाला है, म्यूजिक आने वाला है, धूम धड़का पहने वाला है, पक्का लोहरी गाना है।

0: क्या पंजाबी का सही वाला एक्सेंट है हुमैरा अरशद का, और उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। नवीद इकबाल रोजल से आपने मैसेज किया है, नसीर अहमद भट्टी आपका मैसेज है।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: और लेटेस्ट गोल्ड रेट आपको बता दें 104.75 वन ग्राम गोल्ड का ये रेट है।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. ये है लाइका रेडियो।
0: सचिन आपको बता दें कि यू कैन कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वन डे इंटरनेशनल फ्रॉम संडे 13th सितंबर अंटिल थर्सडे 17th ऑफ सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार ऐप इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: You're listening to Leica Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM, previously known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Leica Extra Podcast Update.
0: और लाइका एक्स्ट्रा की नई पॉडकास्ट भी रिलीज हुई है, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट रेजिंग डेट्स, होस्टेड बाय खुश। और इसमें बात की गई है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिनाल सामर, फाउंडर ऑफ समारा ग्लोबल फाइनेंस से बात करी की गई है, और जो बिजनेस डेट्स होते हैं उनके बारे में जो मिसकंसेप्शन है उस पर डिटेल गुफ्तगू इसमें की गई है। सो सुनने के लायक है ये, वो लोग जो बिजनेस करते हैं खासतौर पे। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर, द मैगजीन शो विद रुबीना खान। लाइक
2: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान, दरखास्तों में जान।
3: Big Boss Season 20, every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner, Leica Radio.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 kilograms जस्ट 8.96 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Hi, it's Ankit Tiwari.
13: Hi, it's Ankit Tiwari.
12: Keep listening to Like a Radio.
14: Like a Radio.
11: Like a Radio launches in Leeds and Brighton.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक सलमा का की आवाज, फिल्म का नाम निकाह, 1982 की फिल्म, क्या आइकॉनिक सॉन्ग है, एपिक सॉन्ग।
1: The Magazine Show with Robina Khan.
0: और अभी जो गीत सुना उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने इसको पसंद किया या जिन्होंने इसको एंजॉय किया। हमें बहुत से मैसेजेस मिल रहे हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी के हवाले से, तो हमारी जानिब से इस वक्त तमाम सुनने वाले जो मना रहे हैं गणेश चतुर्थी की आज हैप्पी डे, सो आप सबको शुभकामनाएं हमारी जानिब से भी। और अगर आप नाम लिखते तो मैं आपका नाम भी मेंशन करती, लेकिन नाम नहीं, सिर्फ आपने कार्ड भेजा है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका दिन जबरदस्त गुजरे आज के लिए और हमेशा के लिए। अभी हमें और भी बहुत से ऐसे मैसेज हैं जिसमें कुछ रिक्वेस्ट भी होती है। शबाना, आपका मैसेज है और आपने लिखा कि आपने गीत रिक्वेस्ट किया है और इसके साथ ही गीत का नाम, ओके मैं ट्राई करूंगी, वादा नहीं है लेकिन ट्राई जरूर करूंगी। अगर गीत मुझे, सॉन्ग मुझे मिल जाए तो मैं जरूर प्ले करती हूँ, ये तो मेरा फर्ज भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। सो स्टे ट्यून्ड टू लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथहॉल ट्रैवल।
0: आपको बता दें कि साउथहॉल ट्रैवल एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आप जानते हैं। साउथहॉल ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टेक्ट साउथहॉल ट्रैवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथहॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.

0: शायद कोई ही ऐसा शख्स होगा जिसने अभी मान फिल्म नहीं देखी होगी और ये गीत उसको पसंद नहीं होगा. वाकई ये इतना सुंदर गीत है, इसमें एक अजीब पीसफुलनेस है, आई डोंट नो, लेकिन है. लता मंगेशकर की अगर आप कभी इंटरव्यू सुने, और आपने ज़रूर, आपकी नज़र से गुजरा होगा कि लता जी ने इतने गीत गाए हैं, इतने लोगों को खुश किया है, लेकिन क्या वो एज अ लता अपने आप से खुश थी? तो आपने ज़रूर सुना होगा, और बड़ी दुखने वाली बात है ये कि उन्होंने कहा था कि अगले जन्म अगर कोई है तो मैं लता नहीं बनना चाहती. लेकिन ये जब गीत मैं सुनती हूँ तो उनको भी ज़रूर लगता होगा जब वह आया थी कि ये गीत ही मतलब एक पूरा एक ऐसा गीत है, अगर किसी ने ये गीत अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गीत गाया हो तो उसकी उसके तो सारे गुना झड़ गए. उसने इतने लोगों को खुश कर दिया, उसने इतने दुनिया को के दिल लूट लिए, कि दुनिया के घरों में जगह बना ली. तो लता जी का सिर्फ एक ये वाला गीत सब गानों पे भारी है, मुझे ऐसा लगता है. और जब शेर आपने लिखा है कि गाने वाले को भी मजा और सुनने वाले को और सुनाने वाले को भी बहुत मजा आता है जब आप सब लोगों को अच्छा लगता है. सुफियान, आपने भी इसी तरह के मैसेज लिखे हैं कि आप कोई गीत अच्छा, आप कुछ हम कुछ, बिल्कुल जी ऐसा ही होता है. बड़ी चीज होती है खुशी, और सबसे बढ़कर वो खुशी जिसमें पीस की मिलावट हो. मिलावट वैसे तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मिक्सचर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इज द बेस्ट रेसिपी फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ. सो इसी नोट पर हम आपको एक ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं अभी के अभी.
1: द मैगजीन शो विद रुबीना खान, शॉर्ट हार्ट टचिंग स्टोरीज विद रुबीना खान.
0: सो आज की कहानी एक कदीम यूनानी या ग्रीक मिथ से है, और इसमें मैं चाहूंगी अगर आपके पास टाइम हो तो ठीक है, और मतलब आप इमेजिनेशन के लिए आपके पास अगर टाइम है तो इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पर एक ऐसा मौसीकार था जो बहुत ही आला मौसीकार था, म्यूजिशियन था, उसका नाम था ओरिफ्यूस, और उसकी मौसीकी इतनी मशहूर कुन थी कि दरख्त, पत्थर और जंगली जानवर भी इसे सुनने के लिए रुक जाते थे. मे भी आज की दुनिया में ऐसी बातें थोड़ी सी लगता है एग्जेजरेशन है, मुबालगा है, लेकिन फॉर अ सेक ऑफ लिसनिंग अ स्टोरी इसकी ब्यूटी यूं ही होती है. तो मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि इसमें इस कहानी को सुनिए, और इसमें से जो हम मॉरल डिराइव करेंगे, जो हम इसमें इसका नतीजा है या जो सबक है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लिहाजा ध्यान से सुनिए. सो ओरिफ्यूस की सबसे बड़ी मोहब्बत थी यूरिडाइस, एक ऑब्वियसली लड़की का नाम है. उनकी शादी हो जाती है, कुछ अरसे बाद एक सानिया होता है और यूरिडाइस की मौत हो जाती है. ओरिफ्यूस ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी मौसीकी को साथ लेकर मुर्दों की दुनिया यानी ए डेथ वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां इसने देवताओं से अपनी महबूबा को वापस मांगा. उसने कहा कि मुझे वो चाहिए, वापस दुनिया में चाहिए. उसने ऐसी मौसीकी बजाई कि वहां मौजूद हर शख्स मुतासिर हो गया. वो देवता और जो देवियां होती हैं वो कुछ चांस दे देती होती हैं कभी कभार. सो उसे एक मौका दिया गया, उससे कहा गया यूरिडाइस तुम्हारे साथ दुनिया में वापस जा सकती है, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम दोनों ऊपर की दुनिया में ना पहुंच जाओ तुम पीछे मुड़कर उसे नहीं देखोगे. तो अब ऐसे इमेजिन कीजिए कि ओरिफ्यूस जो मौसीकार था, म्यूजिशियन था, वो आगे आगे चल रहा और जो यूरिडाइस थी वो उसके पीछे पीछे. तो ओरिफ्यूस ने ये शर्त उसकी मान ली, वो आगे चलने लगा, पीछे पीछे यूरिडाइस उसके कदमों की आवाज के साथ चल रही थी. रास्ता लंबा था, खामोशी थी. ओरिफ्यूस के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई वो मेरे पीछे आ रही है, क्या वाकई वो है मेरे पीछे? आखिर यही सोचते सोचते वो दुनिया की रोशनी के करीब पहुंच गया. उस वक्त तक उसने उसके जहन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखना मना था, लिहाजा उसने नहीं देखा. बस चंद कदम बाकी थे, बिल्कुल चंद कदम बाकी थे, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे ओरिफ्यूस ने पीछे मुड़कर देख लिया. उसकी नजरें यूरिडाइस पर पड़ी, वो इसे देखकर मुस्कुराई, मगर इस लम्हे वो दोबारा मौत की दुनिया में खींची जाने लगी. ओरिफ्यूस ने हाथ बढ़ाया, यूरिडाइस, लेकिन देर हो चुकी थी, इस बार वो हमेशा के लिए इससे जुदा हो गई थी. اور اس کا مورل کیا ہے, سبق کیا ہے. کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ چیز واپس دینے کا موقع دیتی ہے جسے ہم کھو چکے ہوتے ہیں, لیکن اس موقع کے ساتھ صبر کی ایک شرط بھی ہوتی ہے. اوریفیوسس تقریباً کامیاب ہو چکا تھا, تقریباً اس نے یوریڈائس کو پا لیا تھا, مگر صرف ایک لمحے کا شک پوری منزل چھین لے گیا. کبھی کبھی منزل سے زیادہ مشکل آخری چند قدم ہوتے ہیں. میں اس کو ریپیٹ کروں گی, کبھی کبھی منزل سے آخری منزل سے زیادہ مشکل آخری چند قدم ہوتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی کہانی.
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: सर जी, आपको गोल्ड रेट बता दें. आज 24 कैरेट गोल्ड में एक ग्राम गोल्ड के प्राइस है 104.75.
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट. विजिट hartyhanks.com.
1: Leica Radio. और अब आपके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए. बिग बॉस इज बैक, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक और होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन इंडिया ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉट स्टार. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉट स्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. और जियो हॉट स्टार इज अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी. सो ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन थी. उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि संजय कपूर एंड अफ्ताब शिवदसानी लाइव डेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर एंड अफ्ताब शिवदसानी. सिंगर्स सिंगर अहमान ट्रिकी एंड मधुरी इपटियाला संडे 27 सितंबर एट लेस्टर लेस्टर्स डी मॉनफोर हॉल में. और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो. उस्ताद राहत फतेह अली खान TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फतेह अली खान अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ऑन हिज 30th डेथ एनिवर्सरी. इसके लिए आप डेट नोट कर लीजिए, 18th ऑफ अप्रैल संडे होगा उस दिन और 2027 एट O2 लंदन. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो. उदित नारायण एंड आदित्य नारायण लाइव 90s बॉलीवुड लेजेंड. उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट OVO अरीना वेम्बली ऑन संडे 20th दिसंबर. टिकट्स आर अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क. उसके बाद लुकविंदर वडाली. एक और कॉन्सर्ट की इंफॉर्मेशन, लाइव इन कॉन्सर्ट पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली फ्राइडे 16th अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लॉ एंड संडे 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम. और इसके बाद है सुनील ग्रोवर लाइव. कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट OVO अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेटियोरी अरीना ऑन सैटरडे 31st October. Tickets available hain at AXS, Eventbrite and Ticketmaster. Exclusive radio partner hain Leica Radio Network. Aur iske baad Kavita Krishna Murthy live. Ek ke baad ek announcement jo hai wo musiki aur music ke jo lover hain unke liye zabardast hai. So the legendary Kavita Krishna Murthy performs live at Royal Albert Hall on Sunday 1st November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office. Exclusive radio partner Leica Radio Network. Last but not least, Ragasan. Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com. ye thi aapke liye information.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: Ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.

0: ہی خوبصورت گیت آپ نے سنا ہے, مال ملک شریا گھوشال اور اریجیت سنگھ کی آوازوں میں. مال ملک ہمارے آرٹسٹ آف دا ویک ہیں.
1: The Magazine Show with Robina Khan. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: انڈیا منی سینڈ کرنا چاہیں تو آپ کو آج ایکسچینج ریٹ ملے گا 129.27 انڈین روپیز. ڈونٹ فرگیٹ ٹو ایکسچینج ان برانچ, آن لائن اور ایس بی آئی یونو موبائل ایپ. ٹیز اینڈ سیز اپلائی.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
4: Dil ne ye kaha hai dil se
5: bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner. Like a radio network.
6: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner Leica Radio.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: Khan next with Drive.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio launches in Leeds and Bradford.

0: ठुकरा अहमद रुश्दी की आवाज में फसाना ये दिल
1: कर तुम को तड़पाऊं तड़प कर तुम को तड़पाऊं
2: Three big stations One large network We are Leica Radio in London And now in Greater Manchester
0: इसके साथ ही रुबीना खान को आज के

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: दिल का आलम आप ना बताएं मुझे, क्योंकि दिल का आलम जब इस तरह का होता है तो खुद ही बहुत कुछ कह देता है। आपका मुस्कुराना, आपकी कैफियत, उस वक्त जो आपकी हालत हो रही होती है तो पता चल रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, या फिर शायद उसने नजर मिला के यूं हैरान कर दिया। ये साफ पता चल रहा होता है कि किसी ने नजर मिला के यूं हैरान कर दिया, पत्थर को अपने प्यार से इंसान कर दिया। आया वो घर तो घर की फिजा ही बदल गई, दिल था उदास, खुशियों का सामान कर दिया। और मैं भी आपकी खुशियों का थोड़ा सा सामान लेकर हाजिर हूँ पूरे 10 बजे तक। अनीसा नासिर कहते मुझे, आपको क्या कहते मैं आपसे जानना चाहूंगी, और गीतों में क्या कॉमन है ये भी आप ही बताएंगे। मैं तो आराम से बैठ के बस इधर की उधर की गपशप।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com. Locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: अच्छा भाई, काम मेरा आप तो पहले ये कर दें कि पहले गीत के दौरान दो जो मतलब जवाब आए उनमें से एक सही एक गलत है। एक जवाब जवाब जवाब एक जवाब है फवाद जी का और एक है मनु जी का। अब दोनों के रिकॉर्ड देखते हुए, जहन में रखते हुए आप जरा गेस कीजिए कि किसका जवाब सही होगा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
3: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
4: This part of the show is brought to you by ये रिश्ता क्या कहलाता है, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danu Properties.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.
9: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
10: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a Goon, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Goon aur online suno likeagoon.com pe.
13: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
13: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
13: It's Leica Radio.

0: Feel Good Track was brought to you by LycaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Lyca Radio app and website on LycaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Lyca Radio.
2: बता सकता नहीं कितना लगा है, बता सकता नहीं कितना लगा है, कोई पहली दफा अच्छा लगा है। ये दुनिया तो किसी की भी नहीं है, ये दुनिया तो किसी की भी नहीं है, मुझे एक आदमी दुनिया लगा है। दिल की इस दहलीज तक, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आप सबने एंजॉय किया ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने कोई तुक्का या गैस या तीर चलाया ही नहीं कि मनु जी का जवाब सही होगा या फवाद जी का। तो आपको बता दूं कि मनु जी का रिकॉर्ड दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल सही नहीं है, सही जवाब है फवाद जी का। और मैं यही कहूंगी कि तुक्का तीर लगा या आपने बहुत दूर अंदेशी से काम लेते हुए जो वर्ड मुझे बताया है एकदम सही है फवाद जी, कंग्रेचुलेशंस। ताहिर जी, मकबूल जी, ओम प्रकाश लाल जी, मनजीत संगर जी, नौशीन खान जी, वीना जी, अवतार आसी जी, वीनी जी, अमित पटेल जी, मिसेज पेकी चियांग, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। तारिक राहिल जी कहते हैं, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हमको अपनी खबर नहीं जाना, तुम समाने की बात करते हो। बिल्कुल सही है तारिक साहब। मीनाक्षी ब्रह्मभट, रुखसाना अफजल जी, उल्लास जी, उमर जी, संध्या भावसर जी, वेलकम।
0: Lyca Radio.
2: और अब मैं वेल डन कहना चाहूंगी दिवाली स्टोरी की पूरी टीम को। Lyca Radio Network is proud to partner with Sanatan Events for Diwali Story, which arrives at OVO Wembley Arena on Sunday 27 September. दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे 4:30 PM with the student pre-show from 5 PM to 5:45 PM, and the main performance जो है वो शुरू होगी from 6:15 PM to 9:30 PM. Tickets अपनी जल्दी से बुक कर लीजिए from diwalistory.com.
0: Feel Good Classics with Anisa Nasir.
2: बड़े मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल सही, दिल ही छीन कर लेगी आप मुझसे। हरीश रुडा जी, बेहद शुक्रिया, जवाब तो नहीं, आपने वैसे ही हिस्सा लिया।

0: 1968 की एवरग्रीन फिल्म के एवरग्रीन सॉन्ग्स उन्हीं में से एक संघर्ष से हमने आपको सुनवाया और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा विभाकर जी आपका मैसेज, गार्डन में सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप ही के लिए है सब कुछ। और लीजिए एक, आप इस गीत को सुन के याद आया, जब दिल से दिल टकराता है, जब बैट और बॉल टकराता है तो क्या होता है, क्रिकेट मैच होता है। तो कैच कीजिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट, और ये क्रिकेट एक्शन जो है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वनडे इंटरनेशनल्स फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM सैटरडेज एंड संडेज, लाइक अ गोल्ड इन लंदन, द मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर।
2: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Anisa Nasir with The Big Show. Like a radio. Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM. Exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: London, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक

0: ये है लाइका रेडियो. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta 374.7 Pakistani rupees, 87.7 Afghan Afghani, 129.3 Indian rupees, 166.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: The gold is currently trading at £101.98 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: और भी यहाँ पर सोने से भी कीमती चंद नाम शामिल किए लेते हैं जिन्होंने सही जवाब भिजवाया है हमारी आज की थीम का. गीता हर्षद जोशी जी, अरुणा शाह जी, अमिता जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, इरफान जी, गुल जी, किरित जी और नंबर एंडिंग विद 438.
0: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर.
1: आपके जवाब बिल्कुल सही है, सिवाय मनु जी के आज किसी ने भी गलत जवाब नहीं भिजवाया. इतना तो आसान है. और सईदा जी वेलकम टू द शो. कोई पंजाबी शायरी आपने भिजवाई है, पेंट मेरे वीर दी ते शर्ट पा बशीर दी ते टाई चाचे नजीर दी. देखते हैं, शामिल करती हूं.

अपनों के दरमियान पराया रहूंगा क्या, इतने बड़े हुजूम में तन्हा रहूंगा क्या। तूने नजर बदल के रवैया बदल लिया, मैं तेरे साथ वैसे का वैसा रहूंगा क्या। दिल को मन रहा गीतों में नीलेश जी, फरजाना जी, अमित जी, बिल्लू बादशाह जी, सईदा जी, दिनेश पोपट जी और महेंद्र पटेल जी, आपके जवाब भी बिल्कुल सही हैं। रानी जी आप मिल गई मनु जी के साथ, उनका भी जवाब गलत, आपका भी गली कोई नहीं। LYCA 6 is

0: गणपति बप्पा मोरिया, मेरे उन सभी लिसनर्स के नाम जो आज ये पावन त्योहार मना रहे हैं, हार्दिक बधाई आप सबको। ये था प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज। बेहद शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। आई एम सो हैप्पी कि आपको दोनों ही भजन अच्छे लगे। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही देर में मैं आप तक चंद अल्फाज पहुंचाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा गीत है। लेकिन पहले
1: क्रैंकिंग आउट द बिगेस्ट हिट्स फॉर द कैपिटल, दिस इज लाइका विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच।
0: योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 128.4 इंडियन रुपीज टुडे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और बहुत बहुत बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर गीत जो है, बहुत ही फेमस आपकी, मतलब मैं अब क्या कहूँ कि इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता था। बादल बरसे कोई ना जाने दिल की लगी, बादल बरसे कोई ना जाने दिल की लगी, कौन सा गीत है?
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Nasir
1: with the big show, weeknights from 7 p.m.
3: Like a radio.
4: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October. And marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल।
8: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
7: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया।
9: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
11: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900. or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
12: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है. पास हो गया, लड्डू खिलाओ. नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ. अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए. और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए.
13: कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का.
12: जानते हैं क्यों?
13: क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है. लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
14: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
14: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
14: It's Leica Radio.

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: इतने रोमांटिक गीत के बाद ये बनती तो नहीं है, बड़ी मजाहिया सी शायरी है, लेकिन बड़े प्यार से भिजवाई है सईदा जी ने, तो शामिल किए लेते हैं। पता नहीं कभी आपने भी खेला होगा कि नहीं, किकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे पाई दा, एंड आगे पता नहीं किदा फिटे मुंह वगैरह वगैरह। तो हम तो वो नहीं कहेंगे, हम तो वो कहेंगे जो सईदा जी ने लिखा है, किकली कलीर दी, पेंट मेरे वीर दी, शर्ट पा बशीर दी, ते टाई चाचे नजीर दी, कोट वड्डे पाई दा, लंडे तो लियाई दा, फिट शिट करा के धोबी तो धुआई दा, सेंट शेंट लाई दा, शौक नाल पाई दा, बस 200 रुपए विच बाबू बन जाएगा।
1: ये है Laika Radio.
0: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साउथ ओल्ड ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। आप सभी जानते हैं रिमाइंडर की जरूरत है, कॉन्टेक्ट साउथ ओल्ड ट्रेवल टूडे ऑन 0208574 8410। साउथ ओल्ड ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk.
3: Alicia Nasir, live across Greater Manchester with The Big Show.
0: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Laika Radio Greater Manchester.

0: अरे अरे अरे, मुझे छेड़ेगा अकेले में। मुझे वो उस लड़की की याद आ गई जो ऑफिस देर से पहुंची, तो बॉस ने पूछा कि भाई इतनी देर से क्यों आई। तो कह रही सर वो पता है एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था तो तुम क्यों लेट हुई? वो इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तू मुझे छेड़ेगा अकेले में। मुझे भी शौक ना था दास्तां सुनाने का, फराज जी कहते हैं। मुझे भी शौक ना था दास्तां सुनाने का, फराज उसने भी पूछा था हाल वैसे ही। लेकिन मैं दिल से पूछ रही हूँ कि दां की में किंज। अगर आप मिस कर गए हैं हमारे उल्टे पुल्टे के अल्फाज को, तो मैं दोहरा रही हूँ आपके लिए। बादल बरसे कोई ना जाने दिल की लगी। कविता कुमार जी रह गए हो तुसी आज, कमाल है। मुझे आपसे तो मतलब नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि मतलब कभी इंसान कुछ सोच और रहा होता है, जहन में कुछ और आ रहा होता है और लिखा आपने कुछ और दिया हो। आपका जवाब गलत है और सलमा जी आपका भी जवाब गलत है। ना तो ये गीत है दिल का खिलौना हाई टूट गया, और ना ही मैं तो तुम संग नैन मिलाकर। ये तो वो गीत है जिसे सबसे पहले मीनाक्षी ब्रह्मभट्ट जी ने बूझा, रानी ऑफ द आवर फरजाना जी, गीता हर्ष जोशी जी, रानी जी सलाव से, सईदा जी पूरी चलाकू गिया, उल्लास जी, कुलबीर सिंह जी, तोची जी और पी आर ए करसन पिंडोरिया जी। करसन पिंडोरिया जी मुझे वापस आए 2 वीक हो गए। मैं रात तकती थी रोज आपके मैसेज की। मैं समझी भूल गए आप हमें, लेकिन नहीं आप नहीं भूले। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। उमर जी आप अब सेकंड आवर में भी? वो जी मेरी तो प्रमोशन होगी, इसका मतलब है 1 घंटा सुनने के बाद कहा करते हैं कि अच्छा भी अब कल मुलाकात होगी, आज तो अभी तक मुलाकात जारी है। कैरी ऑन।
1: Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dil la sakta hai 129.3 Indian rupees, 87.6 Afghani, 374.4 Pakistani rupees, 166.1 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
0: The gold is currently trading at £101.98 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उनको गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए गणेश चतुर्थी की बधाई देते हुए उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। विजय गुडोरी जी घूम फिर के मंदिर से होकर वापस आ गए, आंखें टीवी पर कान रेडियो की जाने। बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है ऑनेस्टली, थैंक यू वेरी मच। आपने मिस कर दिए 2 बहुत ही प्यारे प्यारे भजन, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।
2: LEICA Radio,
1: where Bollywood comes first.
3: Punjabi Tadka with Anisa.
0: लिसन बैक पर आप सुन सकते हैं whenever, wherever. और लीजिए दोस्तों, पंजाबी तड़के में शामिल करने जा रही हूँ मैं अजरा जहां जी की आवाज। क्या प्यारी शख्सियत हैं, मलिका तरन्नुम नूर जहां जी की नीस हैं ये रिश्ते में, गाती भी बहुत प्यारा है, पर्सनालिटी उससे भी अच्छी, प्यार करने वाली मिठी सी, बहुत ही मीठी है। जीते रहो अजरा जी तुसी।

0: राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तू आ जाए या हम ठिकाने लग जाए। ये था मिस्ट्री गीत जिसे लुबना जी लाहौर से आपने भी पूछा, बेहद शुक्रिया। और रानी जी हमेशा मुझे शायरी भिजवाती रहती हैं, इस टाइम की वजह से मैं शामिल ही नहीं कर पाती हूँ। कहती हैं बहुत अजीब हैं बंदिशें मोहब्बत की, कोई किसी को टूट कर चाहता है और कोई किसी को चाह कर टूट जाता है। क्या बात है। और अगली जो बात आपने लिखी है मैं उससे इत्तेफाक ही नहीं करती यार, मतलब आप जो मर्जी किए जाओ लेकिन हम तो आपको प्यार ही करेंगे। क्यों थोड़े सानू कोई नहीं, तो हनु प्यार नहीं है तो सानू क्यों होएगा फिर। देखो जी, जो प्यार करता है उसको प्यार भी तो चाहिए, उसको भी तो चाहिए होता है ना, उसका भी दिल चाहता है कि कोई उसके नाज नखरे उठाए, थोड़ी सी ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी मोहब्बत करे। नहीं, कहने वाले कहते हैं कुछ देर इंतजार रहा फिर नहीं रहा, कुछ देर इंतजार रहा फिर नहीं रहा, दिल सख्त बेकरार रहा फिर नहीं रहा, जब तक कि उसको और कोई मिल नहीं गया तब तक वो मेरा यार रहा फिर नहीं रहा, तो फिर हम भी क्यों रहेंगे यार। लीजिए दोस्तों, गीत सुनते सुनवाते बातें करते कुरते हम पहुंच गए खबरों के बेहद करीब, खबरों के उस पार। मुझे ज्यादा मत करवाइएगा इंतजार वरना मिस कर जाएंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत। पंकज उदास जी और अलका याग्निक जी की आवाजों में ये प्यारा सा गीत आप सबके नाम करते हुए, वेरी गुड इवनिंग and a happy Ganesh Chaturthi.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.

0: मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मस्त मस्त गीत ने आपको मस्त किया होगा। बहुत ही प्यारा गीत फ्रॉम द मूवी काला पत्थर 1979 की फिल्म। और आज खास तौर पर इसे सुनवाने की वजह कि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शशि कपूर जी, बलबीर राज कपूर जी। एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, इतनी बेशुमार हिंदी फिल्मों में काम किया, उसके साथ साथ इंग्लिश फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। And I have to say ke one of my most favorite actors he was, he is and he will be. पता नहीं क्यों, शायद ये इंसानी फितरत है कि हम चाहते हैं कि हम जिसे पसंद करते हो, खास तौर पर वैसे तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, ताकयामत रखे, लेकिन अब वो जो एक कुदरत का अमल है वो तो चलना ही होता है। जैसे वक्त के साथ साथ इंसान पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन हमारे जहन में उनकी वही सूरत रह जाती। मैंने अक्सर खास तौर पर लेडीज को ये कहते सुने, हो फलां को देखा था कितनी बुढ़ी लग रही थी, अरे उसकी स्किन को क्या हो गया। अच्छा, और ये अपनी हम उम्र के बारे में बातें हो रही होती हैं। अरे बहन, शीशा भी है घर में, खुद को भी देखो, हम सब भी बदलते हैं वक्त के साथ। जैसे आप किसी को कहते हो, वो भी हमारे बारे में कहते होंगे। तो एज एन एक्टर, मतलब फैन कहना चाहिए, एज एन एक्टर्स फैन, किसी भी फील्ड में कोई हो पर्सनैलिटी जिसको आप बहुत सराहते हो, तो दिल नहीं चाहता कि कभी वो उम्र के साथ ढले या कभी वो दुनिया से जाए। होता है ऐसा, होता है ना, आई एम श्योर के होता होगा। मैं अकेली ही नहीं हूँ ऐसे।
1: दिस इज लाइका रेडियो,
2: ग्रेटर मैनचेस्टर। फील गुड ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, डाउनलोडेड फ्रॉम iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस।
1: दिस इज लाइका रेडियो,
2: ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: लाइका रेडियो।

0: Feel Good Track was brought to you by LycaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Lyca Radio app and website on LycaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Lyca Radio.
2: और लीजिए भी तारिक साहब ने तो मेरी बात को दिल से ही लगा लिया. मेरा कहने का मतलब अब मैं क्या समझाऊं आपको, ऐसा नहीं था कि मोहब्बत को पाना ही मोहब्बत होता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको छोड़ के जाए डिलिबरेटली, मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरी वो मुराद नहीं थी जो आपने समझी. मुझे पता है बड़े दुखियारे सुन रहे हैं इस वक्त जिनको मोहब्बत नहीं मिली, कहते लो जी मोहब्बत मिल जाती तो फिर ये दास्तानें कहां से मिलती. सही कह रहे हैं आप, मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है और मोहब्बत ही रहती है, लेकिन किसी के मतलब बुरी तरह आपको ठुकराने पर या आपको मोहब्बत के बदले में फिर आप कहेंगे मोहब्बत का बदला नहीं होता, मतलब आपको अगर रिस्पेक्ट ना मिले, आपकी मोहब्बत की कदर ना हो, मिलना ना मिलना तो वो मुकद्दर की बात है, ये तो किस्मत के खेल हैं. तारिक साहब प्लीज चेयर अप, ऐसी कोई बात नहीं है. लीजिए भाई अब हम आप तक एक मैसेज पहुंचाए जो कि वाकई बड़ी बात है. जी हाँ, बिग बॉस इज बैक, 20th सीजन बिग बॉस का होस्टेड बाय सलमान खान. वीकेंड का वार कल पहला था और मुझे बड़े जरा थोड़े नर्म लगे सलमान खान जी, वरना तो वो तैयार रहते हैं डांटने के लिए, लेकिन चलिए एनीवेज हम आपको बता दें कि शो जो है खुद देखिएगा, एयर किया जाता है एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद द लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस से. जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी, तो याद रखिएगा और जरूर देखने की कोशिश भी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी.
0: ये है लाइका रेडियो.
3: हाय, मैं हूँ रुबीना खान. सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में.
0: दिस इज अनीसा नासिर विद अ बिग शो. One performer.
4: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
4: Sunil
5: Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Lyca Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Lyca Radio Network.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Lyca Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Lyca Radio Network. Proud hospitality partner

0: कोशिश भी मत कीजिएगा दामन छुड़ाने की. मेरे जाने के बाद गोल्डन नाइट का इतना खूबसूरत चुना हुआ म्यूजिक आप कैसे मिस कर सकते हैं. दिले मुस्तर से कह दो थोड़े थोड़े सब मजे चखे, जरा बहके, जरा संभले, जरा तड़पे और जरा ठहरे.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 374.3 Pakistani rupees, 129.2 Indian rupees, 87.5 of Afghan Afghani, 166 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: The gold is currently trading at £101.98 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
0: लीजिए भी अभी हमारी बात हो रही थी उस्मा जी से और उस्मा जी बात करते करते अचानक कहने लगी वो याद आया मेरी बहन जो है ना साजदा आज उसका जो है वो बर्थडे है. मेरी बहन कभी मुझे इस तरह कहना कि हाँ याद आया तो सच्ची आपको नहीं पता कि मैं उसका क्या हाल करूं. लेकिन चलिए आपको याद तो आ गया ना, कम से कम याद ना आता तो क्या होता, जरा सोचिए अंदाजा कीजिए. तो हम अगला गीत जो है वो बहुत सारी मुबारकबाद के साथ आपकी बहन के नाम करते हैं, ठीक है.
3: फ्रॉम लॉलीवुड विद लव विद अनीसा.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: वन एंड ओनली अहमद जहांजेब जी खास तौर पर इस वक्त गा रहे थे नजमा जी के लिए जो आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। और नजमा जी जरा तैयार हो जाइए मांगने के लिए, वो खुद ही तो कह रही है ना, हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही है, तो अच्छे अच्छे सूट जूतियां ज्वेलरी मांग लीजिए। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, बर्थडे पर ही चांस मिल सकता था आपको। आप दोनों को एक दूसरे का प्यार मुबारक हो, बहन तो बहन ही होती है भाई, और बहन जैसे रिश्ते का कोई नेमल बदल है ही नहीं। लीजिए दोस्तों नेमल बदल तो लायका गोल्ड का भी नहीं, सुनते रहिए सुनवाते रहिए लायका गोल्ड को 24 घंटे सातों दिन। गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक सुनिएगा और ब्रेकफास्ट में हाजिर रहेंगी काजल जी। शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM.
2: Like a radio.
1: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood's radio partner, Leica Radio.
5: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Southall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel. At all protected.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound.
10: Like her. मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।

0: Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. Leica
1: Radio. London, get ready for an unforgettable night.
2: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
1: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
1: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
1: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
1: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 0208574 8410 साफो ट्रेवल Auto protected.
6: Big Boss में इस बार मिलेगा बर्दान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरख्वास्तों में जान
7: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: Punjab the biggest tunes, non-stop.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी सेवन स्टेशंस वन पॉडकास्ट वन मोबाइल ऐप Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk. The sounds of love in Manchester. The love sound. Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक